0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए।
1: अहिले बिहानको 7 बजे।

स्वर टंकामाया श्रेष्ठ सुमि श्रेष्ठ र कविता सेन्चुरी को सुमधुर आवाज में शब्द संगीत नावा फिंजु पाखरिन इस चीज में केवल नाच्ने रमाउने मात्र होइन नारी का कथा र भावनालाई पनि महसुस गरौं।

तुम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है। लुकिंग मेरा ऑसम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है, जानती हूँ मैं तुझे तो कितना ब्लडी फुल है। अरे शादी

अरे ताजमहल बनवाना शाहजहां की भूल है, उसके पास पैसा अपने हाथ में तो फूल है। तूने गुस्से में खून मेरा काटा, तो आशिक सरेंडर हुए।

ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं नाच सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, हे हे हे, जी थैंक यू, मैं ठीक हो गया, डॉक्टर साहब थैंक यू, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं मेरी टांगें चल सकती हैं, मैं नाच सकता हूँ।